0: हेलो
1: आप आवाज आ रही है? हेलो
0: हेलो
1: आवाज आ पापा
0: हेलो
1: पापा मिस दुर्गा जी मैं भाई रेडियो से चल रहा हूं
0: हेलो
1: हेलो आप कहां से मंगा
0: हेलो आप तो कहां
1: मिस दुर्गा रेडियो से चल मैं भाई रेडियो से चल रहा हूं मम्मी हेलो
0: हेलो
1: आप कहां ये जो डेबी डेबी डेबी